ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे, हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार।

दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।